वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकर चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन शुक्रवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की जून माह की 19 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 29वीं तारीख। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए

0: रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, अभी आप कुछ देर पहले हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब फिर से एक बार शामिल होते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रस्तुत समाचारों की ओर, कार्यक्रमों की ओर, और सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मृदा एवं हरी खाद। संकलन एवं वाचन स्वर प्रतिमा वर्मा का है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा परीक्षण एवं हरी खाद की। जी हां किसान भाइयों, रबी फसल की कटाई के बाद किसान खेत खाली होने पर मृदा की जांच जरूर करवाएं। 3 वर्षों में एक बार अपने खेतों की मृदा परीक्षण जरूर करवाएं, ताकि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज एवं अन्य की मात्रा का पता चल सके और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है इसका निर्धारण किया जा सके। किसान भाइयों, मृदा जांच से मृदा में खराबी का भी पता चलता है, ताकि उन्हें सुधारा जा सके, जैसे कि क्षारीयता को जिप्सम से, लवणीयता को जल निकास से और अम्लीयता को चूने से सुधारा जा सकता है। मृदा जाँच कराते समय प्रयोगशाला के प्रभारी से नमूनों की जाँच के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य प्राप्त करें, ताकि आगामी खरीफ की फसल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया सके। किसान भाइयों, मृदा की सेहत ठीक रखने के लिए देसी गोबर की खाद या कंपोस्ट बहुत लाभदायक है। जी हां किसान भाइयों, अप्रैल में गेहूं की कटाई और जून में धान मक्का की बुआई के बीच 50 से 60 दिनों खेत खाली रहते हैं। इस समय कुछ कमजोर खेतों में हरी खाद बनाने के लिए ढेंचा, लोबिया या मूंग लगा दें और जून में धान रोपने से 1-2 दिन पहले या मक्का बोने से 10 से 15 दिन पहले मृदा में जुताई करके मिला दें, जिससे मृदा की जो सेहत है वो सुधर जाए। लगातार बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। ऐसे में किसान इस समय हरी खाद का प्रयोग करके न केवल अच्छा उत्पादन पा सकते हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उम्दा और सस्ती जीवांश खाद है। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी बढ़वार जल्दी और ज्यादा होती है। ऐसी फसलों को फल आने से पहले जोत कर मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसी फसलों का इस्तेमाल में आना ही हरी खाद देना कहलाता है। हरी खाद खेत को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैंगनीज, लोहा और मॉलिब्डेनम वगैरह तत्व भी मुहैया कराती है। यह खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर उसकी भौतिक दशा में सुधार करती है। हरी खाद को अच्छी उत्पादक फसलों की तरह हर प्रकार की भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की सेहत

0: ठीक बनी रहेगी। किसान भाइयों, हरी खाद बनाने के लिए खेत में खड़े पानी में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ढैंचा का बीज छिटरा दें। जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिनों में ढैंचा फसल की हल्की सिंचाई कर लें। 20 दिन की अवस्था पर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया को खेत में छिटराने से मॉड्यूल बनने में सहायता मिलती है। 55 से 60 दिन की अवस्था में हल चलाकर हरी खाद को पुनः खेत में मिला देते हैं। इस तरह लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद उपलब्ध हो जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में ढैंचे के पौधों के गलने सड़ने से बैक्टीरिया द्वारा नियत सभी नाइट्रोजन जैविक रूप में लंबे समय के लिए कार्बन के साथ मिट्टी को वापस मिल जाते हैं। हरी खाद से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। हरी खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की भौतिक शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। हरी खाद से मृदा उर्वरता की भरपाई होती है। सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मिट्टी की संरचना में सुधार होने के कारण फसल की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए फलीदार पौधे वातावरण में नाइट्रोजन व्यवस्थित करके मॉड्यूल में जमा करते हैं, जिससे भूमि की नाइट्रोजन शक्ति बढ़ती है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए पौधों को जब जमीन में हल चलाकर दबाया जाता है तो उनके गलने सड़ने से मॉड्यूल्स में जमा की गई नाइट्रोजन जैविक रूप में मिट्टी में वापस आकर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। पौधों के मिट्टी में गलने सड़ने से मिट्टी की नमी को जल धारण की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हरी खाद के गलने सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि मिट्टी से आवश्यक तत्वों को मुक्त करवाकर मुख्य फसल के पौधों को आसानी से उपलब्ध करवाती है। किसान भाइयों, हरी खाद का व्यवहारिक प्रयोग हम उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ नाइट्रोजन तत्वों की काफी कमी है, जिन क्षेत्रों की मिट्टी में नमी की कमी कम हो। हरी खाद का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ना करें। इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण मुख्य फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में नमी के संरक्षण के अन्य तरीके अपनाएं। किसान भाइयों, ये हुई बातें मृदा परीक्षण और हरी खाद की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आपसे बात कर रही थी रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा। आइए दोस्तों, अब शामिल होते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी में और सुनते हैं कड़ी संख्या 181।
2: एपिसोड 181, 181।

शोक संताप और ग्लानी के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

दोस्तों आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं चिंतन कार्यक्रम से और सुनते हैं निर्मला तिवारी की आवाज में आस्था।

एक संत वियावान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे राह से गुजरने वाले पथिकों की सेवा करते और भूखों को भोजन कराया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस राह से गुजरा। उन्होंने हमेशा की तरह उसे विश्राम करने को स्थान दिया और फिर खाने की थाली उसके आगे रख दी। बूढ़े व्यक्ति ने बिना प्रभु स्मरण किए भोजन प्रारंभ कर दिया। जब संत ने उन्हें याद दिलाया तो वो बोले, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। यह सुनकर संत को क्रोध आ गया और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के सामने से भोजन की थाली खींचकर उसे भूखा ही विदा कर दिया। उस रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ तुमने जो दुर्व्यवहार किया उससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। संत ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि उसने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान बोले, उसने मुझे नहीं माना तो मैं भी आज तक उसे भूखा नहीं सोने दिया और तुम उसे एक दिन का भी भोजन न करा सके। यह सुनकर संत की आंखों में अश्रु आ गए। स्वप्न टूटने के साथ उनकी आंखें भी खुल गईं। कहने का अर्थ है कि जब ईश्वर किसी के साथ बिना भेदभाव किए सब कुछ देता है तो फिर हम मानव भेदभाव क्यों करते हैं। ईश्वर की भक्ति अपनी जगह है लेकिन मानव सेवा अपनी जगह है। जो मानव सेवा करते हैं

उन्हें इस बात का कोई भी पश्चाताप नहीं होता है कि ईश्वर को वह व्यक्ति मानता है या नहीं। यह तो उसकी आस्था है, वह माने या ना माने। लेकिन यदि हम किसी के लिए परोपकार कर रहे हैं तो फिर हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है। वह जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और यही सच्ची सेवा है, मानव धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यह बात बार बार कही जाती है। हमारे महापुरुषों ने भी हमेशा हमें यही सिखाया है कि मानव धर्म सबसे बड़ी सेवा है। वह जिस रूप में है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार करो, उसकी सेवा करो, किसी तरह का भेदभाव मत करो। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप सच्चे सेवक कहलाते हैं, अन्यथा आपके अंदर भी फिर तो कुछ चाहत रह जाती है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए ईश्वर आराधना, आस्था, यह सब आप अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगला कैसा है, वह करता है या नहीं करता है, यह उसकी आस्था है। हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि मानव मानव है और हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी यह नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना से और सुनते हैं हरिओम शरण को।

0: आइए दोस्तों, इस भक्ति गीत के बाद अब जुड़ते हैं गांधी कथा से। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी अनुपमा सिंह, माफ करेंगे, अनुराधा सिंह का है।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजिया, आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी

हरी पत्ता भाजियाँ शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांवों के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गाँव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सकें। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियाँ लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियाँ ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: इसी के साथ गांधी कथा कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इसी के साथ दोस्तों आइए अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा से। आज भेंटवार्ता का विषय है बच्चों में निमोनिया। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर नरेश भगत।
2: छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर भारत की तरक्की निर्भर करती है। और यह छोटे बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, खुश रहेंगे तो आगे चलकर भारत की एक अच्छी तस्वीर उकेरेंगे और भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही बीमारी है जो नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है और हमारे माता पिता किस प्रकार सजग हो कि जैसे ही मालूम पड़े कि हमारा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होने वाला है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार शुरू कर दें और साथ साथ हम सावधानियां किस प्रकार रखें। बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश भगत।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे में ये बीमारी आम तौर पर देखी जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो निमोनिया का भी शिकार हो जाता है। तो निमोनिया होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है और लक्षण हम किस प्रकार देखकर पहचान पाए?
3: बॉडी को स्टडी के लिए हम लोग डिफरेंट अनेक सिस्टम में बांटे हुए हैं। जैसे ऊपर में जो भेजा है ब्रेन है और नर्वस सिस्टम में आता है, उसके बाद नाक से शुरू होता है एक सिस्टम, फेफड़ा में ख़त्म होता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मुंह से ख़त्म होकर एनस तक जो जाता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल है, छाती में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हड्डी और जो मसल का जो स्टडी करने के लिए जो बांटा गया है सिस्टम वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट से खुला हुआ रहता है, हवा सांस में हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस तरह से हवा लेते हैं उस क्रम में इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी हमारा एटमोसफेयर में जो हवा में है उसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स है, वो सब इन्फेक्शन का कारण बनता है, सांस में चला जाता है। तो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण हम लोग मानते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर का इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्वेजन होता है वही इन्फेक्शन है। तो निमोनिया भी एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी है, श्वसन तंत्र का प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और जो फेफड़ा का जो मेन अंग जो काम करता है, जहाँ हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वहाँ पर पस भर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसके चलते जो फेफड़ा का जो मेन काम है गैसों का एक्सचेंज करना, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत सेवियर होने पर और भी लक्षण हैं, जैसे इसका मेन लक्षण है हमारा खांसी, बुखार, तेज सांस चलना, दम फूलना। अगर मरीज को तेज सांस के साथ में दम भी फूल रहा है या नीला हो जा रहा है ओठ या शरीर, तो इसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है और तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। अभी भी हमारे यहाँ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान है।
2: जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत वो निमोनिया से भी ग्रसित हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है?
3: निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है लेकिन सही इलाज से पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से हम लोग 28 दिन का बच्चे को नियोडेट बोलते हैं, उस समय सांस का रेट होता है 40 से 60 होता है। अगर 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा तो संभावित माना जाए कि बच्चा

0: का चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसको हम लोग डेंजर साइन के रूप में रहते हैं, तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, जनरली निमोनिया का जो कारण होता है ज़्यादातर वायरल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वो अपने आप ठीक होता है, वायरल 2 to 7 days में बॉडी अपने रिस्पॉन्ड करता है और उसको करेक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी है उसके लिए छोटे बच्चों में जनरली एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का कारण ये है बैक्टीरिया में। और एक साल के बाद जो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हम लोग निमोकोकस बोलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकस, उसके लिए हम लोग एम्पिसिलिन साथ में जेंटामाइसिन या क्लोक्सासिलिन के साथ मिला हुआ, मैंने पेनिसिलिन ग्रुप और जेंटामाइसिन के साथ मिला हुआ हम लोग दवा देते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सही इलाज सही समय पर होने से निमोनिया पूरी तरह से ठीक होने वाला और पूर्णतः ठीक हो जाता है
1: जी। और एक बार जब निमोनिया बच्चे को ठीक हो जाता है तो कितना संभावना है कि बार बार उसे हो, और हम इसका देख रेख कैसे करें? बचाव ही कहते हैं सबसे बड़ा उपाय है।
0: हाँ, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग कहते हैं। तो निमोनिया के बचाव के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छी तरह होना चाहिए। पोषण से बॉडी का इम्यूनिटी बना रहता है, खासकर हमारे झारखंड में मालन्यूट्रिशन की ये समस्या है, जिसके चलते बच्चे का शरीर कमज़ोर रहता है और इम्यूनिटी कम रहता है, जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी घर कर जाता है। प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक टीका आया हुआ है निमोनिया का, इसको हम लोग निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं, सिनफ्लोरिक्स या प्रिवनार के नाम से बाजार में उपलब्ध है। यद्यपि ये महंगा है, कि अगर जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में जो अनिवार्य टीके हैं वही उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शनल टीका में आता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। अन्य भी उपायों से हम निमोनिया का बचाव कर सकते हैं, जैसे टीकाकरण के दौरान 9 महीना से 1 साल के बच्चे को हम लोग विटामिन ए का सिरप देते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। 1 साल में चालू करने के बाद हर 6-6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, जो 5 साल तक पिलाया जाता है, टोटल 9 डोज पिलाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है और बार बार जो निमोनिया डायरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए टीकाकरण में विटामिन ए का सिरप अवश्य पिलाएं, खान पान में भी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो।
1: खान पान में हम किस तरह के फलों का सेवन करें और घर में जो अनाज है उसका हम बच्चों को सेवन कराएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाने में बहुत झिकझिक करते हैं।
0: आपने सही कहा, बच्चे आजकल जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ये स्वादिष्ट तो है लेकिन न्यूट्रिटिव नहीं रहता है। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिया जाए, खासकर विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है हमारे लाल पीले फलों मिलती है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इस सब में ज़्यादा मिलता है। तो इन फलों का समावेश जरूरी करना है। गाजर का उसको सलाद बना के दिया जा सकता है, हलवा बना के दिया जा सकता है, साथ में हरी हरी सब्जियों का समावेश किया जाए जिसमें विटामिन ए की मात्रा रहती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे को यदि हम सही से देख रेख करते हैं, खासकर जो हमारा नवजात शिशु है उसको देख रेख की आवश्यकता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और खासकर हम ठंड के मौसम की बात करें तो ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को अपने गिरफ्त में लेती है।
0: हाँ सही कहा, बच्चों का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि 0 से 28 दिन का बच्चा को हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, सांस 40 से 60 बार लेता है, ज़्यादा 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए 3-4 लेयर गर्म कपड़ा पहनाएं, साथ में अगर कोई जगह रहते हैं दिन में तो उसको गोद में रखें, अपना बदन से सटा करें ताकि गर्मी मिले। हम लोग जब कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसका हम लोग KMC कराते हैं, कंगारू मदर केयर कराते हैं, उसमें स्किन कंटैक्ट करा के बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक गर्म बच्चे को गर्म रखने का विधि है कंगारू मदर केयर, जिससे बच्चा गर्म रहता है, ठंड नहीं लगता है, जिसके चलते निमोनिया किसी पे बचाव का उपाय बनता है।
1: खान पान के भी ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर जो बच्चा नवजात है तो माता अपने स्तनपान उसे ज़रूर कराएं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावार के लिए, और बच्चे को मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चा का विकास सही होगा और बच्चा का बढ़ावार सही होगा और वो चपल होगा, चंचल होगा, और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे।
0: माँ का दूध जो पहला दूध पिलाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं अनऑथराइज्ड रूप से, क्योंकि विटामिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए विटामिन ए की मात्रा रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है माँ का पहला दूध को बच्चे को अवश्य पिलाएं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, इन्फेक्शन से रोकने में मदद

0: मिलेगी।
1: तो सभी माताओं और बहनों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को देख रेख ठीक से करें। यदि बच्चा छोटा है तो उसे स्तनपान कराएं, और बाहर की चीज़ें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। बच्चे जरूर ललायित होते हैं, लेकिन बच्चों के मांग पर आप नहीं जाएं। बच्चे को घर का बना हुआ खाना खिलाइए और फल का सेवन बच्चे को ज़रूर खिलाइए। बच्चे आपके तंदुरुस्त रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। डॉक्टर नरेश भगत, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। दोस्तों, अब समय हो चला है कि हम अपने दिल्ली केंद्र से जुड़े, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कर लें।

समाचारों के बाद दोस्तों फिर से हम 7:10 पर वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और जारी रहेगा हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार।

0: कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,80,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,77,140,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी

पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।

ओरमूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार। आइए अब जान लेते हैं हमारे प्रातःकालीन सभा में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पे हम जुड़ेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश के संग और सुनेंगे झिरगा भगत एवं इग्नेश कुमार तथा साथियों की आवाज़ में उराव एवं नागपुरी लोकगीत। और इसके बाद 7:45 पे हम जुड़ेंगे स्वर सरिता कार्यक्रम से, जो सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा जिसमें हम सुन पाएंगे हरिहरण को। इसके बाद दोस्तों समाचारों की बारी आएगी और सुबह 8 हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। 8:15 से दिल्ली केंद्र से रिले मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद 8:30 पे हम जुड़ जाएंगे रांची केंद्र से और सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। इसके बाद दोस्तों सुबह 8:45 का समय होगा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुनने का, जिसका नाम है गीत गुंजन। दोस्तों, गीत गुंजन कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होगा और इसके बाद सुबह 9 हम जुड़ जाएंगे जोहार पलामू कार्यक्रम से, जिसका प्रस्तुति स्वर होगा मेरा यानी कि आप सभी का रेडियो साथी सैक चटर्जी का और संयोजन करता होंगे संजीव कुमार लाल। दोस्तों सुबह 9:30 पर हम जुड़ेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के संग और सुनेंगे उमंग का भाग संख्या 1310। दोस्तों सुबह 10 फिर से हम एक बार जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी समाचार। 10:05 में दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी समाचार सुनने के बाद 10:10 पे हम जुड़ जाएंगे विविध भारती के केंद्र से और सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेहतनामा। सेहतनामा के बाद दोस्तों 11 का समय होगा रंग तरंग से जुड़ने का और 12 जुड़ेंगे हम उस कार्यक्रम से जो है विविध भारती का एक बेहतरीन कार्यक्रम और उसका नाम है यादों की महफिल। दोस्तों दोपहर 1 का समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़कर हिंदी समाचार सुनने का और फिर 1:05 पे अंग्रेजी समाचार सुनेंगे और 1:10 में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जो रांची केंद्र से रिले किया जाएगा। 1:20 पे फिर से हम जुड़ जाएंगे विविध भारती से और सुनेंगे सुरीला सफर। दोस्तों यह सिलसिला यानी कि दिल्ली रांची और मुंबई केंद्रों से जुड़े रहने का सिलसिला शाम

5:30 तक जारी रहेगा और शाम 5:30 पे हम सुनेंगे हमारे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। इसके अलावा दोस्तों, हम इस बीच सुन पाएंगे विविध भारती की प्रस्तुति दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, हल्लो फरमाइश, सखी सहेली और छाया गीत।

0: दोस्तों, आज का हमारा प्रसारण सायंकालीन सभा में रहेगा कुछ खास, और हम सायं 5:30 पर दिल्ली केंद्र से जुड़कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ एवं संबोधन का सीधा प्रसारण सुन पाएंगे, जो समापन तक जारी रहेगा।
1: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुनेंगे अब लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। आज हमारे पलाश के कलाकार होंगे झिरगा भगत एवं साथी।

दोस्तों, ये है कार्यक्रम पलाश जो लोकगीतों पर आधारित है। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आपने सुना झिरगा भगत एवं साथियों को। आइए दोस्तों, पलाश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इग्नेश कुमार एवं साथियों की आवाज़ में कुछ और लोकगीत।

बड़ी मजा लगे दादा ढोल हो, ए दादा ढोल नगेरा बाजे।

दोस्तों आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आपने सुना झिरगा भगत एवं इग्नेश कुमार के आवाज में कई खूबसूरत लोकगीत। आइए दोस्तों, लोकगीतों के बाद अब हम रुख करते हैं सुगम संगीत की ओर और सुनते हैं अपना कार्यक्रम स्वर सरिता। आज स्वर सरिता के हमारे कलाकार हैं हरिहरण।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता, जो सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम था। आज हमारे इस कार्यक्रम के कलाकार थे हरिहरण। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: 80 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण।

0: हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने दौरे के लिए स्वागत कर फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: स्वस्थ भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता

0: को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित

0: भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड एंड स्टेबल पार्टनर टू द वर्ल्ड अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डिसरप्शन। Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai, jin par lambe samay tak भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for Prime Minister Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, we aapka Nice, Evian aur Paris. Main isse saadve daure ke liye swagat karte. France aur Bharat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in

0: seats at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। झारखंड में इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे उच्च सदन में झारखंड के जनहित, विकास और जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इधर जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिमल नाथवानी ने झारखंड में अपनी एक अलग साख और विश्वास बनाया है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में उनकी जीत पर जश्न मनाया गया। धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
2: 12 साल बेमिसाल देश के लिए आज गर्व का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित किए और उस समय से लगातार देश को विकास के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मान स्वाभिमान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होते जा रहा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव इस तरह के मामलों में कोर्ट के पारित आदेश को गंभीरता से लें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल रांची के शहरी क्षेत्रों में बिजली विभाग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों में भी भाग लेंगे।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्यभर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चाईबासा जिले में भी कई जगह योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक राजेंद्र सलूजा ने कहा कि स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है।
1: से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, तब से लोगों का झुकाव हुआ है योग के प्रति और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें और जागरूक होने की जरूरत है। योग जो है बात करने की चीज नहीं है, योग को करना पड़ता है, इसको जीवन में उतारना पड़ता है।
0: आदित्यपुर नगर निगम में नए नगर आयुक्त के रूप में एजाज अनवर ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री अनवर ने कहा कि निगम क्षेत्र का समग्र विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की शुरुआत साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से की जाएगी।
2: योगदान के बाद मुझे सबसे पहली प्राथमिकता चुकी है नगर का नॉर्मल है, तो डेवलपमेंट यहाँ का पहला प्राथमिकता है और उसकी शुरुआत साफ सफाई से शुरू करेंगे।
0: पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने क्राइम मीटिंग के बाद बताया कि जिले में भू माफियाओं और अवैध भूमि कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
3: समीक्षा के क्रम में जिस थाना प्रभारी ने अच्छा काम किया था उनको रिवॉर्ड दिया गया। इसके साथ साथ इस क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स हैं, पिछले 10 साल के अलग अलग अपराधों के क्रिमिनल्स हैं, उनका वेरिफिकेशन तथा जेल से छूटने वाले जो अपराधी हैं उन पर किस प्रकार से विशेष निगरानी रखी जाए, इसकी चर्चा की गई है।
0: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची, खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में वज्रपात की आशंका को देखते हुए रांची सहित 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष समाचार विराम के बाद।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अब कुछ खेल समाचार। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का कल भव्य समापन हुआ। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को सीधे सेटों में 25-23 और 25-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग के रोमांचक फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्यसभा चुनाव में झारखंड में हुए बड़े उलटफेर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग, झामुमो की जीत, महागठबंधन का प्रणव हारा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन की समीक्षा। हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची में संघ कार्यालय पर हमले के आरोपियों के संबंध पाकिस्तान से। और दैनिक जागरण ने राज्य में वज्रपात से बच्ची समेत 5 की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नाथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र के इस बेहद खास और संगीतमय सफर में आप सभी अजीज श्रोताओं का मैं आपका रेडियो साथी सैकत चटर्जी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कभी ये सपने हकीकत का रास्ता दिखाते हैं तो कभी हकीकत से दूर एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं। हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा रंग हो जो इन ख्वाबों से अछूता रहा हो, चाहे वो आंखों में तैरता हुआ कोई अनकहा सा ख्वाब हो या बंद पलकों के पीछे छुपा कोई अपना। जब ये सपने सुरों और तालों में ढलते हैं तो संगीत की दुनिया में एक जादू बिखर जाता है। भारतीय सिनेमा और इसके संगीतकारों ने इन सपनों को बहुत ही शिद्दत से अपने गानों में पिरोया है। तो बस अपनी धड़कनों को थामिए और यादों के झरोखे को खोल दीजिए, क्योंकि आज का हमारा ये पूरा सफर समर्पित है उन्हीं ख्वाबों, उन्हीं उम्मीदों और उन्हीं सपनों के नाम। चलिए दोस्तों, इस सुरीले सफर का आगाज करते हुए हम चलते हैं जब सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा अभिनीत एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था गीत। इसके गीत गाए थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। गीत को लिखे थे हसरत जयपुरी और धुन में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी।

दोस्तों, सपनों के इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ साल 1967 में आई थी फिल्म परिवार। इसका एक ऐसा गीत जो आज भी हर दिल के बेहद करीब है, एक ऐसा गाना जो विश्वास, उम्मीद और मुकम्मल होते ख्वाबों की कहानी कहता है। इस सदाबहार नगमे को अपनी जादुई और मखमली आवाज़ों से सजाया है सुरों की मलिका लता मंगेशकर और बुलंद आवाज़ के मालिक महेंद्र कपूर ने। जब आप इस गाने को सुनेंगे दोस्तों, तो इसके एक एक शब्द में छुपे जज्बात आपको छू लेंगे, जिन्हें कलम से तराशा था उस जमाने के मशहूर गीतकार गुलशन बावड़ा ने। और हाँ, इस गीत को अपनी रूहानी और दिलकश धुन से अमर बना दिया था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए दोस्तों, इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आंखों में तैरते ख्वाबों के सच होने की ये संगीतमय दास्तान।

आइए सपनों के सुरीले कारवां को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो हमारे सारे सपने, सारी उम्मीदें और आने वाली जिंदगी की सारी खुशियां उसी एक शख्स के इर्द गिर्द सिमट जाती है। तब दिल बस यही दुआ करता है कि जो ख्वाब इन आँखों ने बुने हैं उन्हें हकीकत के रंग भी वही खास इंसान दे। सच्ची मोहब्बत और मुकम्मल भरोसे के इसी खूबसूरत एहसास को शब्दों में पिरोया था साल 1971 में आई फिल्म मन मंदिर के एक बेहद सदाबहार गीत ने। इस गीत की खासियत यह है कि इसे सुनते ही दिल को एक सुकून मिलता है, और मिले भी क्यों ना, जब आवाज़ों के सरताज मुकेश और सुर कोकिला लता मंगेशकर मिलकर गा रहे हो तो जादू बिखरना लाजमी है। राजेंद्र कृष्ण साहब के लिखे इन पाकीज़ा शब्दों को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक बहुत ही रूहानी धुन में ढाला है। पर्दे पर संजीव कुमार और वहीदा रहमान जैसी संजीदा जोड़ी ने इस गाने में जैसे प्राण फूंक दिए थे। तो आइए इस मधुर संगीत की गहराई में डूब जाते हैं और सुनते हैं ये लाजवाब नगमा।

0: रहेगा। जी हाँ, आगे आने वाला कार्यक्रम जोहार पलामू में भी हम बात करेंगे सपनों पर आधारित गीतों का, और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन गीत गुंजन बस आज इतना ही। आइए दोस्तों, अब शामिल होते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू से।
1: जोहार पलामू।

जोहर पलामू कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है संजीव कुमार लाल, जबकि प्रस्तुति स्वर है मेरा यानी कि आप सभी का अपना रेडियो साथी सैकत चटर्जी का। तो आइए दोस्तों, जोहर पलामू कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए, जोहार पलामू का आगाज भी हम गीतों से करते हैं। जी हाँ, मोहब्बत में जब दो दिल एक सुर में धड़कते हैं तो जिंदगी का हर रास्ता आसान लगने लगता है। जब वादे लफ्जों से निकलकर रूह में समा जाते हैं तब बनते हैं वो सपने जो सिर्फ दो प्रेमियों के नहीं बल्कि एक दूजे के हो जाते हैं। देवियों सज्जनों, आज की इस सुहाने सफर में हम आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहां मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक इबादत थी। साल था 1965 और बड़े पर्दे पर जादू बिखेरने आई थी एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार और जिंदगी के मायनों को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास्टरपीस फिल्म गाइड की। इस फिल्म का एक एक गाना आज भी हमारी रूह को छू जाता है। लेकिन जब बात अटूट विश्वास, समर्पण और निश्चल प्रेम की आती है तो एक गाना सबसे पहले जहन में आता है। एक ऐसा गाना जहाँ राजू अपनी रोजी का हाथ थामकर उसे इस दुनिया के हर गम से दूर ले जाने का वादा करता है। इस गीत की खूबसूरती इस बात में भी है कि इसे पर्दे पर जीवंत किया था अभिनय के शहंशाह देव आनंद और बेहद खूबसूरत वहीदा रहमान ने। सोचिए दोस्तों, शैलेंद्र जी की कलम से निकले वो जादुई शब्द, एसडी बर्मन साहब का रूहानी संगीत और संगीत के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब की वो मखमली आवाज़ जिसने इस गाने को अमर बना दिया।

इस गीत के बाद आइए दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत बात करते हैं कुछ जानकारियों की। दोस्तों ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 19 जून वर्ष का 170वां दिन है और साल में अभी और 195 दिन शेष रह गए हैं। दोस्तों आइए अब डालते हैं एक झलक 19 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर, वैसी घटनाएं जो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अमीट छाप छोड़ी थी। इतिहास के पन्नों पर 19 जून का नाम दर्ज करा लिया था। दोस्तों 1996 की 19 जून की बात करें तो बौद्धिक संपदा कानून IPR पर चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समझौते हुए और प्रसिद्ध अंपायर डीकी बर्ड MCC का आजीवन सदस्यता से सम्मानित किए गए। वो दिन 19 जून 1996 का था। दोस्तों 1999 का 19 जून की बात करें तो कोलोन जो जर्मनी में है के समूह 8 के शिखर बैठक प्रारंभ हुआ, यानी कि जर्मनी के कोलन में समूह 8 की शिखर बैठक प्रारंभ हुई थी। 2002 की 19 जून की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया था। और 2003 के 19 जून को फिनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनेली जाटीमामकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2005 के 19 जून को फोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विनफ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया था। 2006 के 19 जून को जापान ने उत्तर कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर चेतावनी दी थी। और 2007 के 19 जून को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सूचना मंत्री का पद से मोहम्मद अली दुरानी को हटाया और विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों की सूची में पाकिस्तान को 12वां स्थान प्राप्त हुआ। 2008 के 19 जून को उत्तराखंड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मेनरी

वो 380 मेगावाट की भैरोधारी परियोजना को स्थगित कर दिया था। इसी दिन यानी कि 19 जून 2008 को ही गाजा पट्टी में हिंसक संघर्ष रोकने के लिए इसराइल व हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ था। आइए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण घटनाओं के जानकारी के बाद फिर से एक बार रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। देवियों सज्जनों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मौसम जब करवट लेता है तो दिल की धड़कनें भी कुछ गुनगुनाने लगती है, और बात जब बरसात की हो तो मोहब्बत का रंग और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, साल 1981 में एक फिल्म आई थी, बरसात की एक रात। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब का एंग्री यंग मैन रूप तो था ही, लेकिन इसके साथ ही इसमें अमर संगीतकार आर डी बर्मन यानी कि पंचमदा का वो जादू था जो सीधे रूह में उतर जाता है। वो कहते हैं ना, जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो खामोशियां भी गुफ्तगू करने लगती है, और जब वो मोहब्बत मुकम्मल होती है तो ज़िंदगी का हर लम्हा एक हसीन ख्वाब बन जाता है। कुछ ऐसा ही एहसास जगाता है इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और रूहानी गीत। इस गाने को अपनी मखमली आवाज़ों से सजाया है सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और हम सब के चहेते किशोर कुमार ने। पर्दे पर जब हम महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत राखी को इस गाने में जीते हुए देखते हैं तो इतिहास बनते हुए भी देखते हैं। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि दो प्यार करने वालों के सब्र, उनके इंतजार और आखिरकार उनके मिलन की एक मुकम्मल दास्तान है। जब दिल से एक ही आवाज निकलती है कि देखो आज हमारे प्यार के सारे सपने सच हो गए।

दोस्तों, ये तो थी बातें मनोरंजन की, गीतों की और हमारे रूह की भी। लेकिन आइए अब जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत कुछ और जानकारी की बातें साझा कर लें। दोस्तों, आज है 19 जून और 19 जून को जन्मे व्यक्तियों के बारे में नज़र डालना तो लाजमी होता है, क्योंकि ये कार्यक्रम है जोहार पलामू, जहां हम मनोरंजन के साथ साथ बात करते हैं जानकारियों की भी। तो आइए दोस्तों, आपको बताते चलें कि 19 जून 1931 को उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्मदिन है। और आज भारतीय नेता, भारत की संसद के सदस्य, कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी का भी जन्मदिन है। 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन का मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता माधव राव सप्रे का जन्म भी 19 जून 1871 को हुआ था। और भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह का जन्म 19 जून 1948 को हुआ था। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं 19 जून को निधन हुए प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो भारतीय प्रख्यात आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद मोहापात्रा का निधन 19 जून 2021 को हो गया था। और भारतीय मिमिक्री मशहूर कलाकार नेरेला वेणु माधव का निधन 19 जून 2018 को हो गया था। और भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक, चिकित्सक व वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन 19 जून 1981 को हो गया था। तो दोस्तों, इस जानकारी के बातों के बाद आइए फिर से आप सभी का स्वागत है सुरों की इस महकते हुए सफर में। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, हम सब सोते हुए तो सपने देखते ही हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और जब उन सपनों में किसी खास शख्स की एंट्री होती है ना, तो दिल की धड़कनें कुछ यूं बढ़ जाती है कि इंसान चाहकर भी चैन से सो नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, साल 1968 में एक फिल्म आई थी, झुक गया आसमान। इस फिल्म में रोमांस के किंग राजेंद्र कुमार और बेहद खूबसूरत सायरा बानू की जोड़ी ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, उसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। दिल में एक हलचल है, आंखों में एक नजारा है, अब इस दीवाने दिल को बस तुम्हारा ही सहारा है। जरा सामने तो आओ छुपाने वाले, आखिर कौन है जो इस दिल में समाया है। जी हाँ, जब इस फिल्म के लिए महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने धुन तैयार की और उस पर मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई और खनकती हुई आवाज का तड़का लगाया, तो एक ऐसा गाना बनकर तैयार हुआ जो आज भी हर महफिल में जान फूंक देता है। ये गाना एक बेहद खूबसूरत पुकार है उस हम सफर के लिए जो ख्यालों में तो रोज आता

दोस्तों आज है 19 जून और आज पूरे विश्व में विश्व एथनिक दिवस यानी कि वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों, सभ्यताओं, कला और ऐतिहासिक विरासतों को सहेजना और उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिवस मानवता की समृद्ध विरासत और उन गहरी परंपराओं का जश्न है जो विश्व भर में लोगों की पहचान को आकार देती है। दोस्तों तो विश्व एथनिक दिवस की महत्व और उद्देश्य पर बात करें तो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यह दिन विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक कला, रीति रिवाजों और भाषाओं की सराहना करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाता है। आधुनिक और तेजी से भागती दुनिया में यह दिवस यानी कि विश्व एथनिक दिवस लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सदियों पुरानी परंपराओं को याद रखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। छात्र और युवा अपनी पारंपरिक वेशभूषा आदि पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य और प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। तो आप सबको हमारे आकाशवाणी डाल्टनगंज के प्यारे प्यारे श्रोताओं को विश्व एथनिक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस महफिल का यानी कि जोहार पलामू कार्यक्रम का मिजाज अब धीरे धीरे और भी हसीन होता जा रहा है और जिस गाने की घड़ी अब आई है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस गाने के बिना भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। साल 1969 में एक फिल्म आई थी दोस्तों, आराधना, और इस फिल्म के साथ ही हिंदी सिनेमा को मिला था एक ऐसा सितारा जिसने अपनी एक तिरछी मुस्कान

और गर्दन झुकाने के अंदाज से लाखों दिलों को अपना गुलाम बना लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। और जब सुपरस्टार का जिक्र हो तो भला दार्जिलिंग की वो वादियाँ, वो टॉय ट्रेन, वो हाथ में माउथ ऑर्गन और बगल की सीट पर बैठी खूबसूरत हसीना शर्मिला टैगोर, ऐसे ऐसे कोई भूल सकता है क्या? वादियां गुनगुनाती है, रास्ता मुस्कुराता है, जब कोई दीवाना अपनी तकदीर ढूंढने निकलता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें थम जाती है, जब ख्यालों की मलिका का दीदार सामने होता है। जी हाँ दोस्तों, इस अमर गीत को संगीत से सजाया था महान संगीतकार सचिन देव वर्मन ने, और इसे अपनी जादुई कड़क और अल्हड़ आवाज से अमर बना दिया था हम सबके चहेते किशोर दा ने। इस गाने के तो मानो हर नौजवान अपनी जीप उठाकर अपने सपनों की रानी को ढूंढने निकल पड़ा था। ये गाना दोस्तों सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हर आशिक के दिल की वो पुकार है जो सदियों से वादियों में गूंज रही है और आज भी उतनी ही ताजा है। तो देवियों सज्जनों, अपने आप को रोकिए मत, बस समर्पित कर दीजिए प्यार के नाम, सपनों के नाम, और आइए सुनते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गीत को।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। जोहार पलामू कार्यक्रम का जो ये सफर था वो फिल्म गीतों का था, मनोरंजन का था, जानकारियों का था और सपनों का सफर था, सुहाना सफर था। लेकिन अब विदा लेने की बारी है इस कार्यक्रम से, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 MHz पर। आइए जुड़ते हैं आगे का कार्यक्रम से, जो है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम और नाम है उमंग। आइए सुनते हैं उमंग की कड़ी संख्या 1300।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। यह झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर।

0: रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर, ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
1: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़

छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद

फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी न मेरे

इस पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।

0: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
0: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग का कड़ी संख्या 1310 से। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं आगे अपने दिल्ली, रांची और मुंबई केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत अन्य कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सरकारी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पारिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी। जी
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गांव, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक
0: अरे
1: टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या सुविधा है? गाड़ी से या घोड़े से कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सीपी के सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है? ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है। जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है, वो तो ये
0: 48?
1: नॉर्मल सी लगते
0: जी,
1: हैं।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है
1: आपको
0: कि
1: सबसे मान
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम में पड़ता,
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड
1: बहुत
0: के
1: ठंडा
0: मौसम
1: पानी।
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए, इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य
1: हाँ
0: प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए, संगीत के लिए मशहूर है। शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ,
1: हाँ हाँ
0: वहां के
1: ठीक है, गंधर्व
0: मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा
1: गौरव
0: हुए
1: गंधर्व।
0: पंडित कुमार गंधर्व
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप घर?
1: देवास में तो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, सन 60-62 से ही।
0: अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ
1: जाली
0: हाँ
1: लगती थी, ये उसकी ट्रेनिंग होती थी सीखने
0: अच्छा
1: के लिए। तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की,
0: अरे
1: बाल
0: वाह,
1: वाले
0: क्या
1: रेडियो।
0: बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे,
1: अब
0: रिपेयरिंग
1: तो वो
0: करते थे?
1: हाँ रिपेयरिंग करता था, और बाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई
1: हाँ
0: आपने। वॉल वाले रेडियो अब
1: हाँ
0: मिलते नहीं
1: बनाते,
0: है?
1: हाँ 5 बाल 3 बाल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे
0: अच्छा
1: चलते थे वो।
0: जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे
1: नहीं
0: दो?
1: आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे
1: हाँ
0: ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा हो गया क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से 20 भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में। हाँ
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप। और
1: मोबाइल
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध
1: हाँ
0: भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ इधर से
0: है
1: उधर तक
0: ना
1: नहीं लगता था।
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने
0: जी
1: उतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समान मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, ढोली
0: बिल्कुल,
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार जी। हाँ
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से। बिल्कुल
0: करणवीर सिंह, जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: ठीक मैडम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी 2 दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है।
0: वाह
1: पहले तो
0: भाई,
1: बहुत ज्यादा तपश थी, तो अभी आज फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब
1: बिल्कुल जी,
0: बारिश रुक
1: बहुत
0: जाती
1: राहत
0: है।
1: मिलती है इधर। तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, जो अभी कुछ राहत मिली है पहले से। आप
0: तो
1: सुनाओ, बॉम्बे का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का
1: वैसे
0: लोकगीत
1: भी हाँ,
0: बहुत
1: बिल्कुल जी
0: समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, तो हम प्रसार भारती थे, तो 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं,
0: क्या बात है
1: तो आज
0: भाई
1: तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है। तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं,
0: जी,
1: तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेंचुरी होगी
1: बिल्कुल
0: वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगे कि हमें देखो इतना 10 साल हो गए सुनते इसको।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लता हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है, गुरदास
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: मान जी का गीत है, बह के वेख।
0: हाँ
1: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी जी 2 लाइन बोलनी थी
0: जी, बढ़िया। और
1: जी।
0: वहाँ का
1: बिल्कुल जी
0: खान पान भी बड़ा मशहूर।

0: सूर्य बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग
0: हाँ जी, हाँ
1: और
0: जी,
1: मक्खन, घी, दही, सब कुछ
0: क्या
1: ये
0: बात
1: बहुत
0: है
1: चलता है
0: भाई,
1: फिर तो। हाँ
0: वाह वाह
1: जी,
0: वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज़ की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूं होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया। तो
0: तो मक्का होता है तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग तो मशहूर है ही है, तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: जी, मक्के की
0: और
1: रोटी, सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे, भुट्टा भी बाजार में
0: हाँ
1: आने लग गया है ना हमारे इधर, हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है,
0: अच्छा, क्या
1: उसको
0: बात है,
1: भी
0: ये तो
1: बेचते।
0: बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका
1: बिल्कुल,
0: तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी
1: बिल्कुल जी,
0: और
1: सुनिए।
0: राजकुमार हैं इस फिल्म में, है ना?
1: हाँ
0: देखी थी
1: हाँ
0: फिल्म?
1: जी, ये देखी है जी मैंने फिल्म जी।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि जी।
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है।
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के
1: हाँ
0: मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप।
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो कश्मीर का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है।

0: बहुत ही अच्छा लगता है।
1: पश्मीने का काम?
0: जी बिल्कुल
1: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
0: जी जी
1: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
0: जी बिल्कुल, ये कौनी जामा होता है, ये मतलब महंगा ही होता है, ये 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
1: जी जी,
0: ये मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
1: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
0: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा मतलब उसमें
1: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
0: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
1: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
1: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
0: थोड़ा बहुत गाते हैं।
1: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
0: चलिए आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
1: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी। मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी। गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती। गर्मी
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: यहाँ पे हम

0: गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, जहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
0: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है, तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
1: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
0: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
1: क्या काम काज है वैसे आपका?
0: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
1: तो साथ में रेडियो चलता
0: अपना
1: रहता है?
0: हाँ जी, रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी,
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी।
0: जी? बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है, और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे,
0: हाँ,
1: लेकिन ये पक्षी है हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ हाँ
1: अभी
0: हाँ
1: बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है,
1: हाँ
0: कैसे बोलना। वो किसी के
1: हाँ भाई,
0: डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता होगा।
1: बिल्कुल ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है, और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ

0: होता है।
1: वाह।
0: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
1: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर
0: बिल्कुल
1: लगता है ना।
0: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
1: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
0: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
0: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों की पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए तो हम जी रहे हैं और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
0: जी
1: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने
0: जी
1: श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है
1: जी
0: आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी, बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम हैं,
1: जी
0: कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले ये आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहां पर रुका हूँ,
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहां तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई
1: है।
0: पेड़
1: जी
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे
1: बाड़ी,
0: आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी तो लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहां पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहां पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी, नमस्ते। जी
0: नमस्ते। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं, और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना, ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों
1: जी
0: की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद
1: जी
0: बनाए जा
1: जी
0: सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं
1: जी जी और
0: तो
1: हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं, तो घर में जैसे कि गाय हैं, भैंस हैं, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं, और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत
1: खाद
0: बढ़िया
1: के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है। गोबर की खाद तो सबसे अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या-क्या है, क्या खासियत है गांव की, बताइए? कौन से पेड़ पौधे हैं वहां पर? ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम
0: तो
1: लोग।
0: आपके
1: जी
0: यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं, अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें। जी
0: चक्री है ना?
1: जी जी
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा, आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि जैन। पहली नज्म हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गालिब के बोल और फैयाज शौकत ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ, मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया। इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा,

0: रंग तरंग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा

0: अब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत। एस

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो

0: एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्ते के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार

0: की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
0: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य

0: Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's Permanent Mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
1: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
0: The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on the 21st of June, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. Telegram had challenged the order, alleged discriminatory treatment, and arguing that it had already removed hundreds of links related to unlawful NEET content and cooperated with authorities. In the FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 के जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का काम जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। संजय सेठ ने भरोसा दिलाया कि यह रेलवे लाइन रांची बुंडू तमाड़ सिल्ली चांडिल और कांडरा समेत आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रखंड प्रभारी के राजू के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन है।
3: जो हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया है, अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी आत्ममंथन करें। इनका बयान हताशा का बयान है, अपने गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं।

0: इधर राजद के बयान पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समीक्षा होगी।
1: क्या कुछ हुआ, समीक्षा हो रही है, सभी बातें छनकर सामने आ जाएंगी, किन परिस्थितियों में किन विधायकों ने वोट नहीं दिया या वोट क्रॉस वोटिंग की। लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिणाम आए, पहली बार एक दलित एक हरिजन को राज्यसभा भेजा गया, उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूं।
0: 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रांची रेल मंडल ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें टाटीसिल्वे, मधुआ, लोहरदगा, बड़काकाना टोरी और लातेहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने भी री नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को राउरकेला और टाटानगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:20 पर टाटानगर पहुंचेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला और टाटानगर के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों और हॉल्टों पर दिया जाएगा। 21 जून को रांची के 21 केंद्रों समेत राज्य के अलग अलग शहरों में री नीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार हुई घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और परीक्षार्थियों को कई लेयर की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के प्रथम चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष जागरूकता एवं परिवार नियोजन गतिविधियां आयोजित की गईं। एएनएम, सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने योग्य दंपतियों और समुदाय को परिवार नियोजन के महत्व, अस्थायी स्थायी गर्भ निरोधक साधनों और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम ने अपनी 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान को 701 से 710 बैंड में जगह दी गई है। इस रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों के बीच आईआईटी आईएसएम धनबाद को 21वां स्थान मिला है, जबकि 13 आईआईटी में इसका स्थान 11वां रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में धनबाद में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और इसका समापन सिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक ने कहा कि नियमित योग अभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
2: यह रन फॉर योगा का कार्यक्रम है, जिसमें सुधा के सभी विभाग के पदाधिकारी अधिकारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए या बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है। सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं, बिना दवा का, बिना औषधि का।
0: बोकारो में आदिवासी जमीनों पर कथित कब्जे के मामले को लेकर बोकारो सरना विकास समिति ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने आरोप लगाया कि भू माफिया आदिवासियों के जमीन का स्वरूप बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं।
3: झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में कारो में किस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हो रहा है। चितुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी जमीन को भू माफियाओं ने उसका नेचर चेंज कर पूरा चितुलिया मौजा के जमीन बेच चुके हैं और यहाँ के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
0: झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में लगभग 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके तहत 5,850 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचारों के अनुसार सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 76,620 पर और निफ्टी 210 अंकों की गिरावट के साथ 23,960 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच होगा। इससे पहले कल धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांड्रा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
5: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
6: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
5: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
7: एक टुकड़ा धूप का।
5: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
5: 21 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगी, और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है, और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ, उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है, और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं, और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूं। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
1: नहीं,

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बगिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी, या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियां बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं। मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है, और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहां तक पहुंचाना, विश्व स्तर तक पहुंचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफर सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्यबद्ध करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना, कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है, और इस गीत को आपको सुनना है, और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपालदास नीरज है, तो गोपालदास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का। तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा, कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार है, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्ति

कहानियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मेरे पापा को सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से। जी वही कारवां गुजर गया, गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है, इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियाने की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहां पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी जबरदस्त फैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं। परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल में लाकुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफी की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सबके साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत, हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया, नौशाद, एस डी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आर डी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल, हमारी गौ श्रोता ने लिखा है कि वो नीरज, गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने। बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल।

बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहां कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा आगे माफक में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं बख्शी की, आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया, बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैजी, हसन कमाल, जानेसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि, कुमार बाराबंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियां आई हो तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: Malin, West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से

0: विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, जागरूक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक

0: और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।

0: पोजिशन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इज वेल नोन।
1: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
2: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से, मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील।

0: लाजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत। परिवार फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाद दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग द

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं।

0: ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया है कि भारत लक्ष्य से पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अनुवांशिक बीमारी के खिलाफ विशेषकर जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
0: विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच मुफ्त उपलब्ध है। झारखंड के करीब 8 से 10% आबादी में सिकल सेल जीन मौजूद है, जिसके लिए जल्द ही राज्य में विशेष मुफ्त जाँच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 322 लाभुकों को उनके नए और सुरक्षित पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका विजन है कि 2028 तक कोशिश किया जाए कि सभी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े भाई बहन को मकान मिले।
0: केंद्र सरकार 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी तैनात करेगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के वास्ते 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन मंजूर किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

0: एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। सभी संदेश केवल सत्यापित नंबर 7827980287 से भेजे जाएंगे। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की पुनर्परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। साहिबगंज जिले के राजमहल में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषिका ऐप के माध्यम से केसीसी लोन के आसान तरीकों की जानकारी दी गई। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने किसानों को लोन में पारदर्शिता और रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।
1: जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल युग है, उसमें यदि आप कृषिका ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में।
0: राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हजारीबाग में सर्वाधिक 3, जबकि रामगढ़, पलामू, लोहरदगा, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम में एक एक व्यक्ति की जान गई। इस बीच रांची मौसम केंद्र ने धनबाद और दुमका सहित 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से?

0: बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना
0: उमरी खदाना।
1: जी।
0: अच्छा बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, डिस्क, पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार से भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं। जी
0: अच्छा तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं,
1: हाँ
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे क्योंकि इतने समझदार हो गए।
1: हाँ काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है। जी
0: शबाना जी आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी भी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते
0: तो
1: हैं।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी, मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं, बताइए
1: जी।
0: लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है क्योंकि
1: हाँ,
0: उमस
1: तभी
0: बहुत हो
1: बहुत
0: जाती
1: ज्यादा
0: है।
1: गर्मी, बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की

0: किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवेल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गबन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवेल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है।
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो

0: सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं।
0: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहां से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े
1: ओहो,
0: हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है। स्कूल
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए, आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह प्यासी है।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की

0: नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना
1: जी
0: लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को
1: जी
0: किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमें माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल। मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम। जी
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम,
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन-कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी, यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी
1: हाँ
0: डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग
1: हाँ
0: स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा
1: उसको
0: खास ध्यान
1: हाँ
0: रखना पड़ता है।
1: उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर, फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि
1: हाँ
0: धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा
1: हम
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है। सुनवाते हैं आपको ये गीत। दम दम।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी।
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैम घर पे ही रहती हूँ जी
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: मैम जी।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: मैम मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी। मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी? हाँ छोड़ा है मैंने, अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है, हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं।

0: एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं, कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
1: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
1: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, भजना मैं तेरी तू मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल
1: भुगावली।
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए। बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है भुगावली।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यहीं पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज की फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए। अच्छा,
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैम मुझे तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाने है।
0: प्रतिभा रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे

0: हमें बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहां पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं।
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं।
1: हाँ वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं। और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में यह क्यों जरूरी है।
1: हाँ तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियाँ जिन्हें अभी और इंतज़ार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियाँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687-0288, मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में

छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

फिर तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबरा कर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

होती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

सुबह उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

पास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

0: अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।
1: निकर टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे।

सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जात बड़ी बाधा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई। जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 30 जून से SIR कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत PLO घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य चुनाव अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में आज रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की और उन्हें युवाओं, किसानों तथा वंचित वर्गों के संघर्ष का प्रतीक बताया। लिंक रेक के विलम्ब से चलने के कारण आज हटिया से खुलने वाली हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 के स्थान पर आज रात 7:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। देवघर के सदर अस्पताल में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता और उपाधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

0: by the Prime Minister, and then after that he'll be coming over here in, say, in a short while he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना.
0: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब. नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ. एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost And then, of course, and the final aim, the crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446.
1: मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत. We're going to start the business, and then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS, and then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology FAT through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और

0: के बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
1: will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister has given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, saath hai Bharat Sarkar.
0: Bharat Sarkar, ji. तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: एंड यू नो दिस split into two distinctive parts. Employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai, wo bhi diya.
1: This component focuses directly on the young individual. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through our verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the, so that more and more people get employment. And they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास ने विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: Yes. See, and then one more thing, see, the Minister of Employment and Labour organises across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए. को टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ प्रधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: Fulfilled under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi, and in fact this applicable period for this one, the one which is taking place right now, the 31st of July 2027. Fracturing sectors, heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are extra. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization. It is a strength of 7.9. And then 84 lakh pensioners who are being
0: से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प, खुश एक अलग सी हवा है ये.
1: बिल्कुल, एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस टू द प्लेनरी हॉल, बिकॉज़ वेरी सून आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिंग इन, वॉकिंग इन विद अदर डिग्निटरीज, एंड ही विल टेक हिज सीट ओवर हियर ऑन द डेस.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच, तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता
1: They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing, ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: And now everyone is connected. सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू 728 डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ, एंड ऑलरेडी 15 लाख पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द एम्प्लॉयमेंट लेटर, द जॉब लेटर्स, एंड दैट्स टोटल इंसेंटिव व्हिच इज गोइंग टू गो टू देम इज

0: 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारी रेट हुआ है एक लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है कर्मचारी मिलेंगे, इसका आपने जिक्र भी किया था है।
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज नो। द स्कीम एम्स टू मेक इट इजियर फॉर यंग पीपल टू एंटर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल एनकरेजिंग बिजनेसेस टू हायर मोर वर्कर्स एंड एक्सपैंड इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, एंड देन सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स एंड देन इन something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands the work for the development of the country.
1: सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.5 प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा। ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है।
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to

0: माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire who's provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah, and then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी, और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री उचित पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं आज, और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vikyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up, and I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address, and then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that the magic button.
0: Magic button.
1: People across the country, and then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build in rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way. Is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रूपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेज आर देयर, द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग, मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट फॉर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, देयर इज अ screen on the plenary hall and the dais, just behind the dais there's a beautiful board and on that the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवा अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his role as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan. You'll see that you come up in your life. End to anything. So you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, fingers to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा, कालकटारा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना आती है, जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know.

0: And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for, not only young, you know, old people, whomsoever he talks to. He talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even, during this Independence Day celebrations, you know, them. And, what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take care. He listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहां जाना चाहते हैं आपको
0: 3.5 crore people are going to get jobs in India right the implementation has already started 15 lakh have already got it today it will be confirmed for them through the press or that button by the Prime Minister and then over the year means over a period of time 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meagre amount, some may get very meagre amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough.
1: देखकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: The person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person. He's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still. Today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है ज्यादा नहीं और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे बातचीत खत्म ना हो नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद द अदर डिग्निटरीज ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके beneficiary, you know, the student, young student who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister has arrived, he has entered and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi. देवियों और सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा कदानला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं

0: जयवर्धन गोयल।
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का
2: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
1: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट।
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान। जोरदार तालियां।
3: जी का एक युवा लाभार्थी ने,
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: नाउ द वेलकम
0: रिमार्क्स, जोरदार तालियां हो जाए।
2: श्री मनसुख मांडविया द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ही वॉक्स टू द पोडियम टू गिव अ स्पीच।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के श्रम मंत्रीगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था, लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान, एक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
3: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख

0: मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
1: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगी में और सच में बयां करती है।
3: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में।
4: आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
3: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
5: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
6: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
7: स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधान

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
1: What a time, what a movement. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
0: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
0: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर

और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए। और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव

ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है,
नई आर्थिक सहायता

0: दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों, साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार कर बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।
0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
5: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
6: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं। आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
7: प्राची, देखिए, भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था, और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी वो थोड़ी सीमित होती थी। वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो बाकी जो सेक्शन सोसाइटी थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियां रही हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहां पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहां पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ये नंबर्स बढ़े हैं, काफी ज्यादा बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इंकम में इंप्रूवमेंट हुई है, तो मुझे लगता है ये काफी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को जरूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आई थिंक इट इज रियली बैडली नीडेड।
5: पुनीत, यू मेंशन अबाउट द सर्विसेज सेक्टर अर्लियर ऑन, प्राची मेंशन अबाउट द टाइम पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2014, 10 इयर्स, बट नाउ यू टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which were kind of looking for something, you know, in their career to do something. You talk about the lawyers, you talk about the doctors, engineers, software engineers, and all. But what about the other part of the population, the youth, who may not be that fortunate, you know, to have that degree of a software engineer or a lawyer or a doctor? So how significant do you see this Prime Minister Bharat Rozgar Yojana actually contributing to that?
7: So Nishit, this is a very interesting question, and of course a question which really confronted us for many decades. So we had opportunities or employment opportunities for youth in cities. So if you move to a metro, so there was a lot of large scale migration, if you'd see, of workforce from villages in India to the cities, and therefore we had metropolitan cities and tier 2 cities coming up. But it really created a lot of human cost also for migrant laborers, because first of all they did not get the jobs that they were skilled to do, which they could have done better probably in their villages or in a smaller towns, and therefore I think there was this great gap in India's growth story, or great gap in India's.
8: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ एवं संबोधन का सीधा प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण कृषि उत्पादों ग्रामीण विकसित विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। बंधुओं, गर्मी तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण रहता है, लेकिन किसान बंधुओं के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। भीषण गर्मी, लू और तेज़ धूप, इनसे बचना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, फसलों का ख्याल रखना, यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान बंधु हैं। खेतों में वो दिन रात मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न, फल, सब्जियों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गर्मियों का मौसम बंधुओं आप सबके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मई जून के महीनों में तापमान कई क्षेत्रों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तक पहुंच जाता है। ऐसे में लंबे समय तक यदि धूप में काम किया जाए तो शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, चक्कर आना, कमज़ोरी और त्वचा संबंधी कई समस्याएं, कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। कृषि कार्य को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता है बंधुओं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गर्मी से बचाव के लिए हम वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपाय को अपनाएं। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा हम कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी कार्य क्षमता और फसलों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि कार्य के समय में बदलाव करें, यानी गर्मी के मौसम में खेतों में काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सुबह और शाम को हम प्राथमिकता दें। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का समय उचित है काम करने के लिए और शाम में 4 बजे के बाद खेतों में काम करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। इस दौरान तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और शरीर पर गर्मी का दबाव कम पड़ता है। बंधुओं, दोपहर की धूप से बचना चाहिए, यानी दोपहर में आप खेतों में काम ना करें, सुबह कराएं। दीजिए दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी पिलाना चाहिए। दूध देने वाले जो पशु हैं उनको आवश्यकता अनुसार 60 से 100 लीटर तक प्रतिदिन पानी देना चाहिए। जी, जो भैंस हैं, गाय हैं, उनको 60 से 100 लीटर तक पानी प्रतिदिन देना चाहिए, इतनी आवश्यकता होती है। पानी की नाद को छायादार स्थान पर रखें, यानी कि पानी गर्म ना होने पाए, और जहाँ पे आप अपने पशु रखते हैं वहाँ भी उचित प्रबंधन होना चाहिए ताकि उन्हें धूप ना लगे। नाद की आप नियमित सफाई करें, पानी को दूषित ना होने दें। अत्यधिक गर्मी में पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट घोल मिलाकर भी दे सकते हैं। पर्याप्त पानी मिलने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, दूध उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरे और रसदार चारे के महत्व पर भी ध्यान दें। गर्मियों में सूखे चारे की अपेक्षा हरा चारा अधिक लाभदायक होता है, इसलिए बंधुओं, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है और आसानी से वो पच भी जाता है, इसलिए आप हरे चारे का प्रबंधन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हरा चारा में आप मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, लोबिया, बरसीम का संरक्षित चारा, गिनी घास, ये सब कुछ दे सकते हैं। हरा चारा खिलाने के लाभ हैं, आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान भाई बहन, पशुओं के शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए और हरा चारा पानी की कमी को रोकता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करता है, दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। हरे चारे को काटकर यानी कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। यदि चारा सड़ा हुआ है, फफूंद लगा हुआ है, तो उसे कभी भी आप अपने पशुओं को खाने के लिए ना दें। चारे को छायादार स्थान पर सुरक्षित रखें और जब भी उन्हें दें साफ और स्वच्छ चारा दें। संतुलित दाना और ऊर्जा युक्त आहार भी देना चाहिए। गर्मी में पशु कम मात्रा में चारा खाते हैं, इसलिए उनके आहार में पोषक तत्वों की सघनता बढ़ानी चाहिए। संतुलित दाना मिश्रण को शामिल कीजिए, मक्का, जौ, गेहूं चोकर, सरसों खली, सोयाबीन खली, मूंगफली खली और दालों के चूरे। दाना खिलाने की सही जो खिलाने का सही समय है सुबह जल्दी दीजिए और शाम या फिर रात के समय दीजिए। दिन के सबसे गर्म समय में दाना देने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय पशुओं की खाने की इच्छा कम होती है। दाने या भूसे को पानी में 20 से 30 मिनट भिगो कर रखिए और उसके बाद दीजिए। इससे स्वाद बढ़ता है, पाचन बेहतर होता है और पशु अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर लेते हैं। खनिज लवण और विटामिन की पूर्ति। बंधुओं, गर्मी में पसीने और अधिक सांस लेने के कारण पशुओं के शरीर से खनिज लवणों की हानि होती है, इसकी पूर्ति करना भी आवश्यक है। प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर दीजिए जिसमें 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हो, 25 से 30 ग्राम सामान्य नमक हो। इसे आहार में आपको मिलाना चाहिए। इससे लाभ होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, दूध उत्पादन बेहतर होता है, प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहता है। विटामिन पूरक भी देना चाहिए, विशेषकर विटामिन ए, डी और ई पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरक आहार दिया जाना चाहिए। मीठा सोडा, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। गर्मी में पशुओं के पेट में अम्लता बढ़ जाती है जिससे पाचन प्रभावित होता है। आहार में सीमित मात्रा में मीठा सोडा मिला देने से जुगाली अच्छी होती है, पाचन सुधरता है, एसिडिटी कम होती है और दूध उत्पादन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसका उपयोग आप जब भी करें पशु चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह लें और फिर उनके अनुसार ही आप इसका उपयोग करें, अपने मन से आप कुछ भी ना करें। अब लू से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए विशेष आहार की आवश्यकता है। गर्मी के मौसम में कुछ पारंपरिक और उपयोगी आहार पशुओं को लू से बचाने में सहायक होते हैं। जौ का दलिया, गेहूं का चोकर, चने का छिलका, दलहन चूरी यानी दलहन का चूरा, इन सब को आप रात में पानी में भिगोकर सुबह खिलाएं, ये लाभदायक होता है। बंधुओं, कभी कभी पानी में थोड़ी मात्रा में आप गुड़ मिलाइए, इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए और पशुओं को ऊर्जा और खनिज के रूप में ये प्रदान कीजिए। गर्मी के अंतिम चरण में कई क्षेत्रों में हरे हरे चारे की कमी हो जाती है, ऐसे में साइलेज का उपयोग कीजिए। साइलेज हरे चारे को संरक्षित करके बनाया जाता है और वर्ष भर पौष्टिक आहार ये उपलब्ध करा देता है। कम पानी और कम जगह में उगाया गया हाइड्रोपोनिक चारा पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, ये विकल्प के रूप में आप ले सकते हैं। भूसे का पोषण यानी यूरिया उचित उपचारित भूसा, गुड़ मिश्रित भूसा और मिनरल मिश्रित युक्त भूसा आप ये दे सकते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराइए अपने पशुओं को, संतुलित पौष्टिक आहार दीजिए, पशुओं को छायादार स्थान पर रखिए, दोपहर में सीधे धूप में उन्हें ना बांधिए, पंखे पानी के छिड़काव की व्यवस्था कीजिए और नियमित टीकाकरण कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार कीजिए। दूध देने वाले पशुओं को अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन युक्त आहार भी दीजिए। गर्मी में बासी सड़ा फफूंद युक्त चारा बिल्कुल ना खिलाएं, ये तो कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने पशुओं को दाना देते हैं, भोजन देते हैं, चारा उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें अच्छा ही दीजिए। चारे को लंबे समय तक खुले में ना छोड़िए, पशुओं को दोपहर की तेज़ धूप से बचाइए, पशुशाला में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए, पशुओं को समय समय पर नहलाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कमजोरी, भूख में कमी या तेज सांस की समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत अपने चिकित्सक यानी पशु चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए, अपने पशुओं का इलाज करवाइए। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि गर्मी का मौसम पशुओं के लिए कठिन समय होता है, जैसे कि हम मानव के लिए होता है वैसे ही पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी होता है। हमारे घर में जो पशु हैं उनका हमें ही ध्यान रखना है, इसलिए उनके सही खान पान उचित प्रबंधन के माध्यम से हम उनको दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। स्वच्छ और पर्याप्त पानी, हरे चारे की व्यवस्था, संतुलित दाना, खनिज लवण, विटामिन की उचित मात्रा पशुओं को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पशुपालक गर्मियों में पोषण और उचित देखभाल संबंधी उपायों को अपनाते हैं तो फिर पशुओं को हम लू से बचा सकते हैं और इस प्रकार हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, दूध उत्पादन भी अच्छा होगा, उनकी कार्यक्षमता बनी रहेगी और सब स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक की आधारशिला है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, ये तो हो गई पशुओं से जुड़ी हुई बातें, यानी उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान, रहन सहन की बातें। तो ये तो हुई बातें और आइए अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हाँ किसान बंधु, हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित विस्तृत बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
2: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं और आज उसी पर हमको विशेष चर्चा करनी है।
1: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें।
1: अच्छा।
2: स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ।
2: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप में नहीं करें,
2: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा।
2: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
1: अच्छा।
2: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
1: अच्छा।
2: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में
2: आप फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उड़द मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी
2: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
1: अच्छा,
0: इस धन की प्रभावी तकनीक माना जाता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। इसी के साथ ही कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा। 7 बजे सुनेंगे श्रोताओं प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। जिले में आज कल

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं TLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2000

0: सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बोकारो में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
2: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शन है, पहले चरण में प्रीपेड मीटर, ये करने का जो विचार है इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज, जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः एटीएनसी लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है प्रदेश में, तो यहाँ भी कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
1: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और डीवीसी के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
3: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहां के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए, कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
1: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने जेएसएलपीएस की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
4: जेएसएलपीएस की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपकी आजीविका भी सुनिश्चित हो।
1: भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन और जनसंपर्क पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाओं का तथ्यों के साथ तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि SIR के सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
5: ट्रेनिंग प्रोग्राम कमीशन के हिसाब से 20 तारीख को DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ERO AERO करोगे, फिर उसके बाद अपने फील्ड ऑर्डर, उसके बाद वो ट्रेनिंग अपने प्रक्रिया में शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग में इनमरेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है, इनमरेशन पीरियड का है, उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग दोनों वो प्रक्रिया

0: या कभी इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा, फिर फॉर्म भरवाने के लिए, एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए, कैसा, वो डिटेल ट्रेनिंग होगा।
1: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एसआईआर कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि बैठक में एसआईआर की बारीकियों पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया गया। सीआईपीईटी रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के कुछ इंटरनेशनल लिंक मिले हैं।
2: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे और फिर धीरे धीरे हम स्नान करते हुए उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन है उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा।
1: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि। संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है।

0: झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के इनामी सब जोनल कमांडर एवं एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खरवार पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि JJMP के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। जो शिवा सिंह खेरवार है इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष पूरे जिले में 15,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल का बचाव जरूरी है।
3: लोगों से मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें। दूसरा, उसको रीयूज करें। तीसरा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते तो रिसाइकिल करें। ये 3 प्रिंसिपल अडॉप्ट करें।
1: इस मौके पर लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
4: विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फिर प्लास्टिक का यूज़ कम करें, सोलर पावर का ज़्यादा यूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो पनसोखा या जो भी घरों के बगल में लगाते हैं जिससे कि वाटर लेवल मेंटेन रहे, ये 4 चीज़ मेंटेन करते हैं तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो है गोल जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं।
1: लातेहार में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से सशक्त एवं अनुसंधान कार्यों में दक्ष बनाना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पलामू प्रक्षेत्र के DIG कौशल किशोर ने कहा कि
5: देखिए, लातेहार थाना अंतर्गत दुर्वा क्षेत्र में आज एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक लातेहार और समस्त स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, शहरों में सभी स्थानों पर जाएं और जाकर लोगों के साथ सीधे संवाद करें और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझने का प्रयास करें।
1: लातेहार जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशा पान से दूर रखना है। यह कार्यक्रम 15 जून से 25 जून तक चलाया जाएगा। जागरूकता रथ रवाना करने के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
4: 15 से लेकर 25 तारीख तक गाँव में विशेष कर जाकर जो नशा लिप्त लोग हैं उन लोगों को हम लोग परशु करेंगे, उन लोगों को हम लोग समझाएंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल आकाशवाणी रांची केंद्र से, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:17 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं वार्ता, मोबाइल संस्कृति और घटते मानवीय रिश्ते। वार्ताकार है स्वाति सहाय।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं स्वाति सहाय, आप सुन रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम को और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है मोबाइल संस्कृति और घटते मानवीय रिश्ते। यह विषय केवल तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि समाज, परिवार, संस्कृति, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल फ़ोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। एक समय था जब किसी प्रियजन से बात करने के लिए पत्र लिखना पड़ता था और घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में बात कर सकते हैं। मोबाइल ने शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मोबाइल फ़ोन ने जहां सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके अत्यधिक उपयोग ने हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित किया है। आज हम तकनीक से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज मोबाइल फ़ोन हमारी जेब में रखा एक उपकरण भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस सुविधा के दौर में हमें यह भी सोचना होगा कि कहीं हम तकनीक को अपनाते अपनाते अपने रिश्तों की गर्माहट तो नहीं खो रहे हैं। पहले परिवार के सभी सदस्य शाम को एक साथ बैठकर बातें करते थे, घर के बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते थे, बच्चे अपने दिन भर की गतिविधियाँ बताते थे और परिवार में आत्मीयता बनी रहती थी। लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग है। एक ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। परिवार साथ हो, लेकिन संवाद कहीं खो गया है। मोबाइल संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी बातचीत पर पड़ा है। आज लोग आमने सामने बात करने के बजाय चैट करना अधिक पसंद करते हैं। भावनाएं इमोजी और स्टिकर तक सीमित होती जा रही हैं। एक संदेश भेजकर हम अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते हैं, जबकि रिश्तों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि समय और संवेदनाओं से भी सींचना पड़ता है। सोशल मीडिया ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। हम अपने जीवन के हर पल को ऑनलाइन साझा करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हजारों ऑनलाइन मित्र होने के बावजूद बहुत से लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यह एक विडंबना है कि हम डिजिटल रूप से पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से पहले से अधिक दूर होते जा रहे हैं। युवाओं और बच्चों पर मोबाइल संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। आज बच्चे मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल गेम्स में अधिक रुचि लेते हैं। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है, बल्कि सामाजिक कौशल भी कमजोर होते हैं। वे मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। मोबाइल की लत कई बार रिश्तों में तनाव का कारण भी बनती है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कमी बढ़ रही है। कई बार परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने के बजाय मोबाइल पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे गलतफहमियां और दूरियां बढ़ती हैं। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से हानिकारक है। समस्या मोबाइल में नहीं बल्कि उसके उपयोग के तरीके में है।

यदि हम इसका संतुलित उपयोग करें तो यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। मोबाइल एक साधन है, उसे हमारे जीवन का स्वामी नहीं बनाना चाहिए। हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले परिवार के साथ समय बिताते समय मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। भोजन के समय, पारिवारिक बैठकों और महत्वपूर्ण अवसरों पर मोबाइल को एक ओर रखकर अपने प्रियजनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आम दिनों में भी हमें मोबाइल का प्रयोग कम करना चाहिए और अपने परिवार को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। दूसरा, बच्चों को मोबाइल का सीमित उपयोग सिखाना चाहिए। उन्हें खेल कूद, पुस्तकों और सामाजिक गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरा, हमें सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को नियंत्रित करना चाहिए और वास्तविक जीवन के रिश्तों को अधिक महत्व देना चाहिए। किसी को केवल संदेश भेजने के बजाय कभी कभी फ़ोन करना या व्यक्तिगत रूप से मिलना रिश्तों को अधिक मजबूत बनाता है। प्रिय श्रोताओं, मानव सभ्यता में विकास के संचार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कबूतरों से संदेश भेजने से लेकर पत्र लेखन और फिर टेलीफोन तक संचार के साधन लगातार विकसित होते रहे। 21वीं सदी में मोबाइल फोन ने इस विकास को एक नई दिशा दी। आज एक क्लिक में दुनिया की कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत में करोड़ों लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। गांव से लेकर महानगर तक मोबाइल ने अपनी पहुंच बना ली। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और सोशल मीडिया के विस्तार ने मोबाइल को आवश्यकता से अधिक तवज्जो दिया है। लेकिन जब कोई साधन आवश्यकता से बढ़कर आदत और फिर लत बन जाए, तब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। क्या हम जानते हैं कि मोबाइल संस्कृति क्या है? मोबाइल संस्कृति का अर्थ केवल मोबाइल का उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऐसी जीवन शैली से है जिसमें व्यक्ति का अधिकांश समय मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमता है। आज लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही देखते हैं। कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत और अंत स्क्रीन से होता है। धीरे धीरे यह संस्कृति हमारे व्यवहार, सोच और संबंधों और जीवन मूल्यों को प्रभावित करने लगी है। परिवार और मोबाइल संस्कृति। भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करते थे, दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, माता पिता बच्चों को मार्गदर्शन करते थे और परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। आज कई घरों में भोजन की मेज पर भी बातचीत कम और मोबाइल स्क्रीन अधिक दिखाई देता है। माता पिता मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चे मोबाइल गेम्स में खोए हुए हैं और बुजुर्ग स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। वहीं कई बार आपका पार्टनर भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है जब आपका ध्यान खाने की मेज पर मोबाइल पर ज़्यादा होता है। यह स्थिति केवल संवाद की कमी नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी का संकेत है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बनते बल्कि समय, संवेदनाओं, विश्वास और संवाद से बनते हैं। पहले परिवारों में आपसी बातचीत का विशेष महत्व था। शाम को लोग अपने काम से लौटकर परिवार के साथ बैठते थे, बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करते थे, बुजुर्ग परिवार को सीख देते और यह सब होने के बाद ऐसा प्रतीत होता था जैसे परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता जा रहा है। आज स्थिति बदल गई है। एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग कमरों में बैठे अपने अपने मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कम और मोबाइल स्क्रीन के साथ अधिक समय बिताने लगे हैं। परिणाम स्वरूप संवाद कम हुआ है और भावनात्मक दूरी बढ़ी है। यह स्थिति केवल परिवार तक सीमित नहीं है, मित्रता के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। पहले मित्र घंटों साथ बैठकर बातचीत करते थे, सुख दुख बांटते थे। आज मित्रता सोशल मीडिया की लाइक, कमेंट और फॉलो तक सीमित होती जा रही है। आभासी दुनिया में मित्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक जीवन में आत्मीय संबंध कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और दिखावटी संबंध। मोबाइल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक मंच तो दिया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। लोग अपने जीवन की खुशियाँ और उपलब्धियाँ तो साझा करते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक समस्याएँ और भावनाएँ छिपा लेते हैं। इससे दूसरों के जीवन को देखकर तुलना की भावना बढ़ती है और मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। लोग घंटों ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी भावनाएँ साझा करने के लिए कोई करीबी व्यक्ति नहीं होता। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन कई बार ये मंच वास्तविक संबंधों की जगह आभासी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। आज लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे क्षणों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की परेशानियाँ, संघर्ष और भावनाएँ अक्सर छिपी रहती हैं। इससे दूसरे के जीवन को देखकर तुलना की भावना पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि बाकी सब खुश हैं और केवल वे ही समस्याओं से घिरे हैं। यह मानसिक तनाव और असंतोष का कारण बनता है। अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य तकनीकी के इस युग में एक विरोधाभास देखने को मिलता है। हम पहले से अधिक जुड़े हैं, लेकिन पहले से अधिक अकेले भी हैं। कई शोध बताते हैं कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग चिंता, तनाव, असाद और अकेलेपन को बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग लोगों में अकेलेपन, चिंता और असाद की भावना को बढ़ा सकता है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। यह स्थिति विशेष रूप से युवाओं में चिंताजनक है। बच्चों पर प्रभाव मोबाइल संस्कृति का सबसे अधिक बच्चों पर प्रभाव और युवाओं पर दिखाई देता है। आज बच्चे खुली हवा में खेलने के बजाय गेम्स में अधिक समय बिताते हैं। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आंखों की समस्या, मोटापा, नींद की कमी और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इसके साथ ही बच्चों के सामाजिक कौशल भी प्रभावित हो रहे हैं। जब वे वास्तविक लोगों के साथ कम और स्क्रीन के साथ अधिक समय बिताते हैं तो उनके भीतर संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास बाधित होता है। युवा पीढ़ी भी मोबाइल और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में उलझती जा रही है। कई बार वे अपने परिवार और समाज से कटकर केवल डिजिटल पहचान बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। इससे उन्हें व्यक्तिगत संबंधों में दूरी आ जाती है। बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। कई माता पिता बच्चों को शांत रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। बच्चे मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल गेम्स में समय बिताते हैं। इससे शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, आंखों की समस्या बढ़ती है, एकाग्रता कम होती है, सामाजिक कौशल प्रभावित होते हैं, रचनात्मकता घटती है। बच्चों को स्क्रीन नहीं, संस्कार और संवाद की आवश्यकता होती है। युवाओं को मोबाइल की लत। आज का युवा वर्ग मोबाइल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। ऑनलाइन गेमिंग, रील्स, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया ने युवाओं का बहुत समय घेर लिया। कई छात्र पढ़ाई के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं। समय का यह अनियंत्रित उपयोग उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। मोबाइल की लत कई बार आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को भी कम कर देती है। मोबाइल संस्कृति का एक कम चर्चित लेकिन गंभीर पहलू है बुजुर्गों का अकेलापन। संयुक्त परिवारों के टूटने और डिजिटल व्यवस्था के व्यस्तता के कारण बुजुर्गों के पास बातचीत करने के लिए लोग कम होते जा रहे हैं। वे परिवार के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता समय, सम्मान और संवाद की होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज का समाज उन्हें वह समय नहीं दे पा रहा है। भारतीय संस्कृति सदैव संबंधों, सह अस्तित्व और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित रही है। हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। जब हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को परिवार मानती है, तब हमें अपने घर और समाज के रिश्तों को अधिक महत्व देना चाहिए। मोबाइल का उपयोग आवश्यक है, लेकिन मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। मोबाइल संस्कृति का प्रभाव कार्यस्थलों पर भी दिखाई देता है। आज लोग ऑफिस से घर आने के बाद भी मोबाइल पर काम करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार के लिए समय कम हो जाता है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बिगड़ने लगता है। यह तनाव और पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। क्या मोबाइल पूरी तरह नुकसानदायक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, व्यापार और संचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। COVID-19 महामारी के दौरान मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को जोड़े रखा। ऑनलाइन कक्षाएं चली, डॉक्टरों से परामर्श हुआ और लाखों लोगों ने घर से काम किया। इसलिए समस्या तकनीक नहीं है, बल्कि उसका असंतुलित उपयोग है। फिर समाधान क्या है? हमें तकनीक से दूर नहीं भागना है, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। परिवार के साथ नो फोन टाइम निर्धारित करें। भोजन के समय मोबाइल का उपयोग ना करें।
सप्ताह में एक दिन डिजिटल

0: डिजिटल डिटॉक्स का प्रयोग करें, बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें, परिवार और मित्रों में आमने सामने बातचीत बढ़ाएं, पुस्तकों, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाएं, बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी बातें सुनें। प्रिय श्रोताओं, तकनीक मानव जीवन को आसान बनाने के लिए है, उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं। मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, हम मोबाइल के हाथ में नहीं। मोबाइल संस्कृति ने हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन किया है। पहले लोग धैर्यपूर्वक दूसरों की बातों को सुनते थे, लेकिन आज त्वरित प्रतिक्रियाओं का दौर है। लोग संदेश का उत्तर तुरंत चाहते हैं। धैर्य, सहनशीलता, प्रत्यक्ष संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ रही है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक एक सेवक है, मालिक नहीं। यदि हम मोबाइल का उपयोग अपने नियंत्रण में रखेंगे तो वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन यदि हम स्वयं मोबाइल के नियंत्रण में आ जाएंगे तो हमारे रिश्ते और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन रिश्तों, भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण होता है। मोबाइल और इंटरनेट हमारी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे प्रेम, अपनापन, सम्मान और विश्वास का विकल्प नहीं बन सकते। आइए हम संकल्प लें कि तकनीक का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने रिश्तों की कीमत पर नहीं। हम मोबाइल को अपनी आवश्यकता तक सीमित रखेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के लिए अधिक समय निकालेंगे, क्योंकि जीवन के सबसे सुंदर क्षण में किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय से मिलता है। याद रखिए, जब जीवन की कठिन घड़ियाँ आती हैं तब कोई ऐप, कोई रील और कोई पोस्ट हमारे आंसू नहीं पोंछती। हमारे अपने लोग ही हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, संवाद को महत्व दीजिए और तकनीकी के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी बात महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के विचारों से प्रेरित एक संदेश के साथ समाप्त करना चाहूँगी। रिश्तों की मिठास बातचीत से बनी रहती है और बातचीत का स्थान कोई मशीन कभी नहीं ले सकती। आइए संकल्प लें कि मोबाइल का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने परिवार, समाज और मानवीय रिश्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम मोबाइल संस्कृति और घटते मानवीय रिश्ते। वार्ताकार थी स्वाति सहाय। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर के इस गाने को आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में, जफर गोरखपुरी के बोल थे, अनु मलिक के संगीत। और अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में आशिकी टू के इस गाने को, अंकित तिवारी के संगीत हैं, संदीप नाथ के बोल।

0: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम रोजगार से जुड़ी बातें उड़ान।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में एमबीए जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं, जैसे कि बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। बी फार्मा स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए एम फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का फार्म डी पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय एमफिल एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार एमबीबीएस नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं। और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, रोजगार संबंधी बातें। संकलन निर्वाचन मीनाक्षी कर्ण के थे। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रांची केंद्र से सुनेंगे रात्रि 8। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

चित्रपट से भी आपने सुना। सोनू निगम, जसविंदर नरुला की आवाज़ में, समीर के बोल, आनंद मिलिंद के संगीत, फिल्म का नाम दूल्हे राजा। और अब आइए सुनते हैं फिल्म कृष के इस गाने को अलीशा चिनाय और मोहित गर्ग की आवाज़ में, समीर अनजान के बोल हैं, राजेश रोशन के संगीत।

के साथ फिल्म संगीतकार कार्यक्रम चित्रपटी ही संगमात होता है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम भाग 19। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस कार्यक्रम को, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों

0: की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक

0: निशान बनाए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू, की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो

0: ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरनमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट्स में माओ का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओ को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया। और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओस अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओस तकरीबन खत्म ही हो गए हैं। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे
1: बिल्कुल।
2: जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे, क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और

0: करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन, तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हम

0: जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरीके वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय

0: पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो बैलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद अब सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए। और मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोडमैप

0: आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रप्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्च

0: व्यक्तित्व मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।

0: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गाड़ीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
6: दिस इज द कंट्री।
7: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही

0: रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है, जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come.
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
2: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matrushakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rairangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The Apex Court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity by taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, first secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, expanding employment and economic opportunities. The participants are Shishir Sinha.
1: उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे. 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है. उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक्वामे मुत्तहदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है. लिबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है. बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए. और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चिलिया का मुकाबला पार्क गायून से होगा. अब खबरें तफसील. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की. PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है. इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे. उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है. जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तिरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले

0: मामले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है से इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। यह प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। यह देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए दो करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मंसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिवीजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मियारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था, इस समय का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रोकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हुकूक शामिल हैं। से में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साला बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाएख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नजरअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वजीर आजम ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से सियाहत को फरोग मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौके बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से
3: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाए मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कही। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अक़वामे मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्द में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया के किम मिन सन को सीधे गेम में और 21-16 21-18 से हराकर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जनूबी कोरिया की पार्क गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिखा जयसवाल को 22-20 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21 21-15 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
5: भारती है देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: तुझे सलाम मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे
2: सलाम। कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम,
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: यू आर इन लव,
1: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहादेर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए ये सफ़र शुरू होता है। रात के 11 बजे तक हम बने हैं आपके साथ कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म कर्ज के गाने को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, आनंद बख्शी के बोल। इसके साथ ही लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ में आपने सुना मेरी जंग फिल्म के इस गाने को, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, फिल्म का नाम राम लखन।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंध। अभी आपने सुना फिल्म राम लखन के इस गाने को, और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म राम लखन के इस गाने को।

फिल्म रहना है तेरे दिल में। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुना इस गाने को, हैरी जयराज के संगीत, समीर के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म फिलहाल के इस गाने को। अनु मलिक के संगीत, गुलजार के बोल थे।

फिल्म दीवाना बन के इस गाने को आपने सुना सुनिधि चौहान, शान की आवाज़ में आनंद श्रीवास्तव के संगीत समीर के बोल थे। श्रोताओं सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा ये समाप्त होता है। आखिरी पेशकश हम लेकर हाजिर हैं फिल्म कसूर के गाने को, कुमार शानू और काय अग्नि की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत। और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: आंध्र प्रदेश चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई आईआरआईएनएन पोर्टल, .in ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका।